0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मेरी हाथों मिनोनो चूड़िया है,
3: आज दे जाने नालो ज्यादा तू सोनी लग रही है।
4: तुसी भी आओ अपनी खूबसूरती नु सजाओ स्कार प्रो टेक्सटाइल नाल।
3: पाओ सूट्स, साड़ीज, लहंगास, ज्वेलरी अते फैशन एक्सेसरीज,
4: ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मच मच मोर।
3: आज ही पहुँचो
4: स्कार प्रो टेक्सटाइल, 2659 इस्लिंगटन एवेन्यू एट एलबीएन। कॉल 416-742-0010, 416-742-0010।
5: ओ हेलो यार, मेरा भी लोड ले जी, ट्रक फिर खड़ गया यार।
6: ओ प्रावा, हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा।
5: सच्ची?
6: ओ मुच्ची,
5: फेयर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी, जो के इंजन रीबिल्ड, ट्रांसमिशन रीबिल्ड, रिपेयर, डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे।
6: इना कोड़ा सालना दा तजुर्बा।
5: हुन एड्रेस भी लिखा।
6: ले लिख ला, 1 गुड मार्क प्लेस, इटोबी कोक, यूनिट 5।
5: कॉल 647-706-9257, 647-706-9257।

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: बाबा जी मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे
3: 6478886000।
2: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है?
3: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो विवाह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी?
3: बाबे दा घर भी एना ने ही बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते लई परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 6478886000 और विजिट NRIMB.com।
5: सियाने कहंदे ने व्याह दा लड्डू जो खाए ओ पछताए, जो ना खाए ओ भी पछताए,
6: पर एक लड्डू खा के कोई नहीं पछताउंदा, ओ है जी स्वीट महल दा लड्डू,
5: जिस विच है प्यार दी मिठास, कई सालां दा विश्वास, खालस सामग्री नाल तैयार ताजिया मिठाइयां अते खाने।
7: थोड़ा खाओ वधिया खाओ, स्वीट महल नाल जश्न मनाओ।
8: या आज ही पहुंचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड, यूनिट 9, नियर हाईवे 427, 416-679-9191।
9: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन दा व्याह, मैं तो अपने सारे चाह पूरे करांगी।
10: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दे।
9: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
10: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां भी तबिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
9: तो मेरे जीजे ली घड़ी?
10: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां, रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
9: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर, 7198 एयरपोर्ट रोड मालचंद, इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290।
11: ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ।
12: ਓ ਜੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ।
13: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਂਟ, ਟੇਬਲ, ਚੇਅਰ, LED ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ, ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ, 360 ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ।
12: ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 6477080079।
14: घर होवे या ऑफिस, ड्राइववे या पार्किंग लॉट्स, शॉपिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट, पाथवेज पेविंग ले परफेक्ट है कैलिडन पेविंग।
15: एक्सेस रैंप्स, एक्सकावेशन, ग्रेडिंग, रीसर्फेसिंग, ओवरले फार्म, ड्राइववे पेविंग, ये सब कर देने। आज ही कॉन्टेक्ट करो जसबल नू, इट्स 416-818-8900
14: और विजिट www.calidonpaving.com।
16: ਟੋਲ ਜਗੀਰੋ ਦਾ ਤੇ ਟਾਬਾ ਜਗੀਰ ਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ।
17: ਜਗੀਰ ਦਾ ਟਾਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਥੈਂਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾ।
16: ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਗੋਟ ਕਰੀ, ਟਿੱਕਾ ਮਸਾਲਾ, ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ,
17: ਮਿਕਸ ਵੈਜ ਪਕੌੜਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਿਸ਼, ਬਿਰਿਆਨੀ, ਬਰਗਰ ਤੇ ਪਰਾਂਠਾ,
16: ਡਿਜ਼ਰਟਸ ਵੈਜ ਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਇਟੀ,
17: ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਗੀਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ।
16: 1 Cedar Grove Road, Mono, Orangeville ਦੇ ਵਿੱਚ।
17: ਕਾਲ 6474003229
16: ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ www.jagirdataba.ca।
18: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM Supreme Dale Dental Center दे नाल।
19: Wide range of services, wisdom tooth, root canal, denture.
8: For dental extraction, cleaning, gum treatment and implant.
18: SM Supreme Dale Dental Center, 2260 Bovet Drive East, Brampton. Bovet Jingusi Dental Center, 811 Bovet Drive, Unit 17, Brampton. Call 905-789-266.
10: बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा, कर ले लेना या देना तोहफा।
4: हाई एंड डिजाइन एंड क्वालिटी यानी हाई पॉइंट फर्नीचर, कस्टम मेड, कनेडियन मेड इंपोर्टेड फर्नीचर ले आज ही विजिट करो हाई पॉइंट फर्नीचर,
10: 7550 किम्बल स्ट्रीट, मिसिसागा। कॉल 6473825500।
9: पंजाबी दिल, अंग्रेजी वाइब, CJMR इज बैक अलाइव, CJMR 1320 आ गया ओए, छा गया ओए।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

चले तो ले ले पूरा दिन, हो तैयार तो घंटे न गिन, मैं हूँ यही एच सर्विस, टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट, हाथ मेरा थाम, लेट मी मेक यू स्माइल, आई लाइक योर स्वैग, यू लाइक माय स्टाइल, देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ, जब भी होती लो तो मेरा नंबर करे डाल, मैं हूँ तेरे साथ तू है मेरे संग, तेरे साथ टाइम की खबर न लगे, किसी भी चीज में कसर न लगे, मांगू दुआ यही नजर न लगे, बेबी ऐसे हो मत हमें क्या मत, तू मुझको मिली है, ये है मेरी किस्मत।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: आ कौन आ बिना गल्लो नहीं अखा जी चाड़ी फिर दे

0: तू अपना फर्ज अदा कर गया, असी अपना फर्ज निभावांगे, तेरी रीत नू लैके चलांगे, तेरे वांगू एंड करावांगे।
1: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
2: Show mercy on it.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

शहर की आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320.
2: CJMR 1320. This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.

0: जश्न मनाओ
1: या आज ही पहुँचो 680 रेक्सडेल बुलेवार्ड यूनिट 9 नियर हाईवे 427 416-679-9191।
2: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करना चाहते हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड 4550 ईवन जीरो जून 12 इन ब्रैम्पटन और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200 कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
3: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लेके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डिवेलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।

0: महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: पिज़्ज़ा मशीन दी स्टील ते मिकलोगलन वाली लोकेशन ते इस सैटरडे संडे दो लार्ज पिज़्ज़ा विद तुहाडे मन पौंदियां 3 टॉपिंग ईच नाल सिर्फ ते सिर्फ $19.99 दे विच कैश डील पिकअप कर सकदे हो। ए डील इस लोकेशन ते ही मिलेगी, 373 स्टील्स एवेन्यू एट मिकलोगलन, शेरिडन कॉलेज दी बैक साइड, गिहिला ऑफिस वाला प्लाजा। वधेरे जानकारी लोकेशन दा नंबर है 905-456-3343 905-456-3343। पिज़्ज़ा मशीन।
3: जो आया से चली सी।
2: जीवना जा मरना इंसान दे हाथ नहीं, परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दियां धार्मिक रौ रीतां दे नाल उस नूं विदा करना साडे वस है। अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मां वेले याद रखो, रैक्सडेल दे विच लोटस फ्यूनरल होम, जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दियां रस्मां इको ही छत थले हुंदियां हन। लोटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188 6475478188। Lotus Funeral Home.
4: Punjabi Dil, Angrezi Vibe. CJMR is back alive. CJMR 1320. Aa gaya oye, chha gaya oye.
5: Punjabi aa gaya. Tusi sun rahe ho Asian Vision Arsh Chawla de naal.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

ये बात याद करोगी जब दूर चली जाओगी, बहकने दे मन को और कितना समझाओगी, तड़पोगी जब रेगिस्तान में प्यास लेकर आओगी, कहाँ इतनी प्यास लेकर जाओगी, पीछे मुड़कर देखो तो

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।
1: योर वॉइस, योर कम्युनिटी, योर कल्चर। दिस इज CJMR 1320, द वॉइस ऑफ द सिटी।
2: This is CJMR AM operating on 1320 kilohertz from Mississauga, Ontario. We are currently conducting a technical test under authorization from Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at

0: तुम्हारी तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: रख दिता सीगा जिदे प्यार ने वगाड़ के मिलिया कि मेनू अज आदतां सुधार के मिलिया कि मेनू अज आदतां सुधार के।
1: शहर दी आवाज दिलां दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: Your home for culture, community, and unity. Here on CJMR 1320.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

छड़ी न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: फिर हुड़ पुल्लियो ना। प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर,
1: स्वीट महल वाले दा ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर। 100 तो लेके 700 दी कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वाले दा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर। 1133 क्रेडिट स्टोन रोड, वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
0: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल PR कार्ड कनेडियन सिटीजन या OCI ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड 4550 इवन जीरो जून 12 इन ब्रैम्पटन और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स and travel.
3: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
4: HK Movers,
3: local and long distance, we also ship cart, Kailor transport and moving services.
4: For service with a smile, give us a call.
3: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
4: 416-524-6704.
3: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist.
3: HK Movers.
6: HK Movers.
7: वाह गिल साहब ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी उपरो एनी सारी एनर्जी ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है
8: ओ यार काव्य होमो केयर होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ
9: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो ता एक बार होम्योपैथी दे माहर नीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो बीमारी पावे कोई भी होवे कॉल करो
10: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन
11: नुड़कुरो के कैलेडन सब्जी फार्म तो तुसी हर तरह दी ग्रोसरी इंडियन स्टाइल कईयां दातियां रंबे खुरपे तंगलियां फोल्डिंग बेड नवारी पलंग मूड़े कुर्सियां टेबल पारे थले वाले हर तरह दे हर साइज दे बर्तन तो इलावा ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग कर सकदे हो साग बनया बनया भी मिलदा है जिन्ना मर्जी लाओ या घर लिया के साग तुसी खुद बनाउणा है तां कैलेडन सब्जी फार्म ते आओ 1250 एयरपोर्ट रोड एट मेफील्ड जानकारी लई कॉल करो 905-840-9000 कैलेडन सब्जी फार्म
12: ਘਰ ਦਾ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੁੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਲ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਮੈਨਸੂਰੀ ਤੇ ਸਟੋਨ ਵਰਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪੈਡੀਓ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਹਾਰਡਸਕੇਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-8956 या 416-474-6836 Oracle Construction Strong Foundations Lasting Results
13: बाबा जी मेरा ब्याह नहीं हो रहा कोई मंत्र था फूको बच्चे थे
14: 647-888-6000
13: बाबा जी आ केड़ा मंत्र है
14: बच्चा ए नंबर चमत्कारी है जिन्हें मिलाया ओदी समझो ब्याह दी तैयारी है
13: पक्की गल बाबा जी
14: बाबे दा घर भी एना ने बसाया NRI मैरिज ब्यूरो
15: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते ले परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो कॉल 647-888-6000 और विजिट nrimb.com
16: रीमैक्स गोल्ड रियल्टी ना कम कर दे अर्श चावला लै के आए ने बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले वाली डील आशवा विच बन रहे हन 3 बेडरूम जफरी होल टाउन होम्स विद कार पार्किंग दे नाल कीमत सिर्फ ते सिर्फ 399000 5000 डल दे के इना दी बुकिंग शुरू है 2028 दे विच तुसी अपने घर दे मालिक बन जाओगे कॉल करो अर्श चावला 416-303-1515 जो लै गया सो लै गया जो रह गया सो रह गया क्योंकि खंड दे खड़ाउने बार बार नहीं होने की तुसी अपने घर विचले IPTV बॉक्स ते पूरे विश्व भर दे हिंदी पंजाबी उर्दू इंग्लिश गुजराती बंगाली मद्रासी तमिल पाकिस्तानी चैनल्स दा फिल्मा सीरियल ड्रामे न्यूज बच्चा दे चैनल अनबीटेबल कीमत दे देखना चाहुंदे हो ता भारी बचत लई अज ही कॉल करो 6475545859 647-554-5859
17: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਸਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
6: ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤਾਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੇ IPTV ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਲਾਓ ਸਰਕਾਰ 416-716-7094 ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 11 AM to 12 PM ਐਂਡ 6 PM to 10 PM। ਤੁਸੀਂ 24/7 IPTV ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-716-7094।
18: ਦਿਸ ਇਜ਼ CJMRAM ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਨ 1320 kHz ਫਰੋਮ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਓਨਟੇਰੀਓ। ਵੀ ਆਰ ਕਰੰਟਲੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਸਟ ਅੰਡਰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ and Economic Development Canada, ISED. If you are experiencing interference with your radio or television reception, please contact us at 416-303-1515 or report it via email at chavlanewsnetwork@gmail.com. Thank you for your patience.

0: Meet Rohit Dayasman at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: ਓ ਹੈਲੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੋਡ ਲੈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਫੇਰ ਖੜ ਗਿਆ ਯਾਰ।
3: ਓ ਭਰਾਵਾ, ਹੈਪੀ ਬੜਿਆਲ ਤੇ ਸੁਖਾ ਢੇਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ।
2: ਸੱਚੀ?
3: ਓ ਮੁੱਚੀ,
4: ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੈਪੀ ਬੜਿਆਲ ਤੇ ਸੁਖਾ ਢੇਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਜਨ ਰੀਬਿਲਡ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰੀਬਿਲਡ, ਰਿਪੇਅਰ, ਡੀਪੀਐਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ।
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ।
2: ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਲਿਖਾ।
3: ਲੈ ਲਿਖ ਲਾ, 1 ਗੁੱਡ ਮਾਰਕ ਪਲੇਸ, ਇਟੋਬੀਕੋਕ, ਯੂਨਿਟ 5।
4: ਕਾਲ 6 4 7 7 0 6 9 2 5 7 6 4 7 7 0 6 9 2 5 7।
5: Hey, hi, क्या हाल है तुम सबका यार?
6: अरे जुगनू, कहाँ टिमटिमाते हो यार, आजकल तो दिखते भी नहीं।
5: बस यार, वो घर खरीदने के चक्कर में ना टेंशन हुई पड़ी है।
6: चल तेरी टेंशन दूर करते हैं। यू रिमेम्बर अर्श चावला?
5: हाँ यार, नाम तो सुना है।
6: अबे नाम सुना है तो काम भी सुन ले। रीमैक्स का टॉप प्रोड्यूसर है, रेजिडेंशियल, प्री कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, बाय, सेल, इन्वेस्ट, यू नेम इट, ही गॉट इट। व्हेन यू हैव गॉट अर्श चावला बाय योर साइड, योर ड्रीम प्रॉपर्टी परचेस इज जस्ट एज इजी एज सीन, लाइक, बाय। कॉल अर्श चावला एट 416-303-1515, 416-303-1515। तुहाडा अपना अर्श चावला।
7: वाह भाभी जी, मुबारकां, तुहाडा घर ते बहुत शानदार है। कारपेट्स, वुडन, सब कमाल दे ने, लगदा है काफी खर्चा कीता है।
8: ए कमाल है जी, GTA फ्लोरिंग दा, अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा समान। वड्डे शोरूम ते आओ, हार्डवुड कारपेट, लैमिनेट टाइल्स दी खूबसूरत ते लार्ज वैरायटी पाओ। कॉल करो नव बराड़ नू 905-605-6805, 905-605-6605।
9: GTA फ्लोरिंग कैनेडा,
10: GTA फ्लोरिंग कैनेडा।
11: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ, अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ, ताजियां स्वादलियां मिठाइयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स, जित्थों तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो। ग्रेट फूड, बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो, 499 रे लॉसन बुलेवार्ड, ब्रैम्पटन। कॉल 905-450-6464, 905-450-6464।
12: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट, लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
13: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਲੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਦਰਾਸੀ, ਤਾਮਿਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ, ਫਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ, ਡਰਾਮੇ, ਨਿਊਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475545859, 647-545-5059।
14: ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਈਵ, CJMR ਇਸ ਬੈਕ ਅਲਾਈਵ, CJMR 1320। आ गया हुए, छा गया हुए।
15: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.